0: संग तिरड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उदार

0: संग सफल जन्म
1: साध संग नहीं कष्टकाल दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध के संग कुलूखत हरे साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहा उहा सोहिला साध संग बिसरत हर मिला
0: छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध हृदय बसै नानक उतरा साथ सुन रसै
0: साध के संग सुनो हर नाव साध के संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै
0: साध के संग लगे प्राण मीठा साधु के संग कट कर डीठा
1: साध संग भया ज्ञाकारी साध संगत भई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग।

0: आज्ञा प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे
1: तैसा हरण तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग
0: तैसा स्वर तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी विखाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
0: ऊपर ताए साई जोगत नानक हो पुरखे कहिए जी।

0: कोट सख के बेते सदा निहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सत जीवे
0: कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज

0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पी तरे,
1: संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काज जो लवै,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिक्त जोन किरमाए,
1: संत के दुखन तृष्णा मैं जरे, संत के दुखन सब को चलै,
0: संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए,
1: संतो पीका था को नाहि, नानक संत पावे ताउ पीगत पाहि,
0: संत का निंदक महा अताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई,
1: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावे ता

0: संत की दुख ना सुते टरै
1: संत के दुखी को नाही ताओ नानक संभाव सा लय मिलाए
0: संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे
1: संत के दुखी को ज्ञान फरमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किछु नाही आपन भी जाते ही पाहे
0: संत के दुखी को अवर न राखन नानक संत पावे तले उबार
1: संत का दुखी ओंबल लाए जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पावक ईदर नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटा केला जो बुआर तिलकी तुम्हारे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत
1: यत निंद का तुरि पया नानक ज्योतिष पावे सोई त्या
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले।

0: नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: अंदर मंगल सद जाता सर्व थो सुनिया कर ताके
0: राज में राज जोग में जोगी तप में तपिसर गृहस्थ में भोगी
1: त्याहे त्याहे भगत सुख पाया नानक तिस पुर का कलंक न पाया
0: जाकी लीला की कीमत नाहे सगल देव हारे अब गाहे।

0: सजवली।
1: सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल।
0: सिखी गुर दर बंधन गिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे।
1: सतगुर सिखी बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै।
0: सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख बटवागी हे।
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारै।
0: गुर के गै सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे।
1: आपस कहो कर।

0: संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार।
1: और पासा मिल विसारो, चरण कमल में उतारो।
0: कर्ण कान सो प्रभु समराथ, दृढ़ कर कहो हो नाम हर बात।
1: यो तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत।
0: एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे।
1: जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे।
0: जिस सुख को नाए जिस सुख को नित वाशे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत।
1: जिस सुबा को करे पलितनी, सा सुबा पल हर की शरणी।
0: आनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर आप खदलाए।
1: सर्वन दान हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान।
0: मन पर बोध हो हर कह नाए, दैत स्थावत आवे ठाए।
1: ताको बिघन न लागे कोई, जा कर दा वसा हर सोई।
0: कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
1: पाओ दिन से पूरन भयास, भक्त पाए आत्म प्रगास।
0: इतकार जाए बसे अवनासी, कहो नानक काटी जम फांसी।
1: तत विचार कह जन साचा, जनम मरा सो काचो काचा।
0: आवा गवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरुदेव।
1: यो रतन जन का वेगार, हर हर सिमर प्राण आधार।
0: आनक अपावना छूटन हारे, सिमरत सा वेद विचारे।
1: हर की भगत करो मन लाए, मन पंचत नानक फल पाए।
0: सांगना चालस तेरा तना, तू क्या लावटा वह मूर्ख मना।
1: सुत मीत कटावर बनका, इते कहो तुम कवन सनाता।
0: राज रंग माया विस्तारा, इनते कहो हो कवन छुटकार।
1: हस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी।
0: जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत।
1: चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के दिल बिक जाए।
0: आप जपो अवरा नाम जपाव हो, संत कहत रहत गत पाव हो।
1: साधु सत हर को लाओ, सह सुभाई नानक गुण गाओ।
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हमें बिख फैल। शाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावे सच तना।
1: हर पूंजी सच करो व्यवहार, इहा सुख दरगह जयकार।
0: सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख।
1: एको जापे को सालाहे, एक सिमर एको मन आहे।
0: एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत।
1: एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर्ण प्रभ्याप।
0: आन के विस्तार एक ते पै, एक अराध पराश।

0: पूरन पुरख नहीं डोलाने।
1: सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजा जाओ साधक संग।
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंदिन लिवलाग।
1: बड़ भागी जब

पछा श्री अस्तोज जो करो रक्षा राख लिहो मुहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो बुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सुवारा।

तुम करो। सेख्यो वार्य सेख संघरो दुर्जते उठपत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तव तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुवै मरे। पुरख जमन बग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नए आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ठरे तत्काल। कृपा दृढ़तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वत सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा।

चौपाई संबत सतरह सहस पणिज अर सहस पुन तेन कहिज भाद्रव सुधि अष्टमी रविवार तीर सत दुरव ग्रंथ सुधारा हित श्री चरित्र।

गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी खास जी आप जी ने प्रवान करनी जी। हुण साढ़े अति सत्कारयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी दमदमी टकसाल तो वह आप जी ना लड़ीवार गुर इतिहास साझा करनगे जी। आओ उन्होंने पासों सतगुरु जी अमृतमई बाणी और गुर इतिहास सरवण करना करिए जी। आप जी ने असीस बख्शनी फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: करके सुंदर सुंदर घोड़े और सुंदर सुंदर शास्त्र वधिया किस्म दे लै करके हाजिर हो रही हैं।
1: तीर्थक होत पूजा हरमंदर
0: दिवाली का जेड़ा जोड़ मेला है संगतां दी इकत्रता है। पहला सचखंड हरमंदर साहिब विखे सतगुरु महाराज जी की महिमा का गुण गायन हुंदा है। गुरु साहिबाना दे शुक्र करदिया होया चौथे पातशाह महाराज

ते शरदा मन की पूर नानक दास यह सुख मांग मुख कर संतन की तूर अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूर नानक दास यह सुख मांग मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद्या गए अरदास।

0: ठीक है तबले, बिल्कुल सही है, इतने ही रहने दो तबले की आवाज। एक पॉइंट माड़ा बढ़ा या थोड़ी जी गेन जी थोड़ी एक पॉइंट बढ़ा दो, मैं इतने ए बोलना पैंता जरा भी इतने ही रहा मैं गेन बढ़ा थोड़ी वोकल था ना नहीं एक पॉइंट बता दो रेगुलर ओवरऑल जरा मेन गेन जरा
1: सो क्यों बिसरे
0: जो जोर लगन डे हूँ पहला जोर नहीं लग रहा दोपहरे जो आप गाया ना।

जी नहीं ठीक है, बेस बिल्कुल ठीक है, बेस का टाइम ना जे कली वोकल चेक करनी, फिर मैं उदा गुनगुनाऊंगा, फिर वो हो जाना।

बेस ज्यादा। नहीं उदा भी थोड़ा ज्यादा लगता बेस, पहला ठीक सी हूँ तीन बाद बेस थोड़ा घट करियो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक से हूँ। ठीक है ना,

0: उसमें एडजस्टमेंट नहीं करते ना जो इफेक्ट है वो वही रहने के साथ तो ये सुन के बैठना का बाहर जब तक ये मात्रिक अंदा का जो और मात्रिक ये और भी कर ले बेटा आगे हो सकता है ठीक है हां ये ना बने और पर मेरे ख्याल से ओवरऑल सही है क्योंकि बात ज्यादा प्रोबेबिलिटी की ये संगत टाइम में चलता है ठीक है आज तो देश से पूरी तरह से ऐसा वाली क्योंकि ऐसा वाली रिस्क का
1: अगर जी बोलो आज जी साइडल पे सेटिंग है ना सारी इतने करती है बस हाँ साइड की जितना मेरे वाले को साइड वाला 1 पॉइंट का ये 2 पॉइंट का
2: फिर थोड़ा माइक फर्क है सो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा माइक जड़ा
1: नहीं मास्टर माइक
2: थोड़ा है पास 37 डिग्री
1: हां साइड वाला भी कोई 35
2: डिग्री 35 डिग्री 36 ते 35 ते दूसरी चीज है तबले का दो चीज़ होंगे ना एक गेट होंगे कि जो कि पहली आवाज़ ये जी पहली आवाज़ है ये आनी चाहिए उस तो बाद लंबी जी आवाज़ होनी आनी चाहिए क्योंकि बाएं तो यही होंगे ना अटैक चाहिए पर जो बार बाद दे विच है वो ज़्यादा गूंजता है तो दूसरा है कंप्रेशन कंप्रेशन होंगे कि जी घट आवाज़ तो ज़्यादा आवाज़ उन्होंने दोनों ने तो वो तबले विच वो थोड़ी रेंज बहुत ज़्यादा होती है उन्होंने थोड़ा घटाना ਚੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
3: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ
4: ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
3: ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼
5: ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
5: ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ
3: ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਕੋ
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
3: ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
3: ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ

0: बंद है?
1: नहीं चल रहा।
0: वाहगुरु, वाहगुरु,
1: थोड़ी थोड़ी शार्पनेस थोड़ी।
0: वाहगुरु, वाहगुरु।
1: थोड़ी जी एक और एक नंबर और बता दो थोड़ी।
0: वाहगुरु, वाहगुरु,
1: नहीं,
0: वाहगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।
1: बेस तो मतलब जिदा तुसी देखे हो सामने सुन के बेस जिदा आवाज क्लियर ना।
0: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ।
1: नाले विसर कर ठीक है। हाँ बेस थोड़ा घटा। हाँ विसर नहीं कर।
0: वाहगुरु,
1: थोड़ा बेस घटा दे थोड़ा।
0: वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु, वाहगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहेगुरु,

0: बोलो जी वाहिगुरु।
1: ठीक है भाई। वेल्डिंग चेक करके आनी है। नाटा चली हो गया या मासी लैंड मासी लैंड गया। आहो ठीक है जी।

मंगल नित सकिए, सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सपागे, आप ना पिर जापए, अनहत बानी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह क्या, तुध कर्म कमाया के कर्म कमाया, तुध शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन नाम साया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक इहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, संसार तुम देख दे, इहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवर ना कोई, कह नानके नेत्र अंध सी, सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई, ए श्रवनो मेरे हो साचा सुनना नू पठाई, साचा सुनना नू पठाई, शरीर लाए सुनू सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी, सच लख वडाणी, ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो, साचा सुनना नू पठाई, हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन मजाया, मजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया, गुरद्वारा लाए भावनी कना, दसवा

मुहूर्त अजूने सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।

अपने साहिब का परवासा। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज फरमान करते हैं अति चंगे भाग वड्डियां भागां वाले होए हाँ, भेटियों का अर्थ है मिलना। पातशाह कहिंदे ने अति चंगे भाग हन, पूरे गुरु का मिलाप हो गया। मन है पया परगास, मन दे विच बाणी दा वासा हो गया। हिरदा गुरु दे चरणा नाल जुड़ गया, पूरा गुरु मिल पिया। ते अगली बख्शिश की हुई, हुण मन निश्चिंत हो गया। मन दे विच कोई चिंता नहीं है। क्यों? जदों हिरदा पूरे गुरु दे चरणा नाल जुड़ जाता है, गुरु की बख्शिश हो जाती है। पातशाह कहिंदे ने हुण एक मन दे विच एक भरोसा वज गया। किहड़ा? कि हे मेरे वाहिगुरु, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। हुण तेरा ही सहारा है, तेरे तो बगैर। हुण जदों मैं किसी नूं याद करांगा, मालक आप जी पहुंच जाओगे, मेरी सहायता करोगे। तेरे तो बगैर होर कोई दूसरे ते कोई विश्वास नहीं है। अपने सतगुर कै बलिहारै, आगै सुख पाछै सुख सहजा, घर आनंद हमारे। अगलियां पंक्तियां विच गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज फरमान करते हैं, मैं अपने सतगुरु तो बार बार बलिहार जाना। क्यों? बलिहार इस करके जाना हाँ कि जदों उन्हों याद किया जाता है, उसकी भगती की जाती है, हुंदा की है? आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। लोक भी सुखिया हो जाता है, पर लोक भी सुखिया हो जाता है। हिरदे रूपी घर आनंद नाल भर जाता है। हर एक इंसान अपने जीवन नू आनंदमयी बनाउना चाहुंदा है। कोई नहीं कहिंदा मैं मेरे मन नूं चिंता लगी रहे, दुख लगे रहन। हर एक दी यही अरदास है, तन करके सुखी हो जावां, मन करके सुखी हो जावां। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहिंदे ने, सुखी होना चाहुंदा है, मन आनंदमयी अवस्था विच रहे, की करिया कर? आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे ने, आनंदमयी अवस्था प्राप्त करना चाहुंदा है, गुरु दे चरणा विच आ जाया कर। ये जिहड़ी आनंद दी अवस्था है, ये गुरु दे चरणा विचों मिलदी है। ते उसे गल ते मोहर ला रहे ने गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारा।

ब्रह्म ज्ञानी स सुंदर सी ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा।

ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी संहिता ब्रह्म ज्ञानी चंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंता ब्रह्म ज्ञान जिस कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर नान ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मनमाह

ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञान सुप्रभात ब्रह्म ज्ञानी का सकल उपकार ब्रह्म ज्ञानी अंतरंग का ब्रह्म

हर के गुण गाए। राम नाम जो करे बीचार से तनवंत गणि संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछानै इत उत की ओ सोजी जानै।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस तेरे डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोय स्थूर नै किस जन्मै नै किस मरै आपन चलते आप ही करै आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप थाप अविनाशी नाहीं किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उतरे तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै।

सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किस कोय सर्वनिरंतर एको सोय आपे बिहिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शांद सा तेरे की चरणी पाओ नानक है मन ए अनराव मन सा पूरण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जा का नेत्र होर तिसका मंत्र न जा।

उचरै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख कौ जीय नाल सुमार। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन मह सहै।

Ben de. वाहेगुरु बाबा जी, वाहेगुरु तेग बहादुर जी, वरहा अमरदास जी, पहले वो गुरु कर एक ओंकार सत्य।

वाहेगुरु वाहेगुरु क्या वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु.

0: अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तान माहि मिटावो
1: सिमरो जासर संबरे के नाम जप जग अंत अनेक
0: वेद प्राण सिमरत सुधाकर।

0: भोजन सुख सुदा
1: निध प्याऊ प्रसाद सैन मुख प्याऊ बैठ को दैन
0: ए नुर गुण गुण कशु न बूझे बक्स लयो तो नानक सीजे
1: ए प्रसाद तार ऊपर सुख बसे सुख प्राप्त मीत।

0: प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जे प्रसाद सुगंध फल लावे तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मन अंदर
1: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना कह सिमरो तिस रसना
0: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग
2: जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे

0: जय प्रसाद आरोह कंचन देही, लिवला बहुत इस राम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मानस पावह हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
1: जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उठे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे।
1: जय प्रसाद आप भूख न पहिजे, मन ते सिमर क्यों आसती।
0: जय प्रसाद अस्त हस्त असवारी, मानतिस प्रभ को कभू ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना, राग प्रोय प्रभ अपने मना।
0: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत्य सह त्याई।
1: किसे त्याई जो एक रख है,
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभ को साथ साथ सितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीति जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: जय प्रसाद सुने करनाद, जय प्रसाद तेके बिस्मार।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।

0: जप सोए
1: आप जपाए जप सुनाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपाते होए परगास प्रभु दयाते कमल बिगास
1: प्रभु प्रसन्न